जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावै नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागै संतोख सदा तृप्ति बना। पहनना रख पत परमेश्वर फिरना गे नहीं थीवना। भोगना मन मदे हर रस संत संगत मैं लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी मन हर भगती संग सीवना। मात्या हर रस मैं राते तिस बहुड़ ना कबहू औखीवना। मिलो ते सर्वनिधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना। मारू महला पंजवा कर अठवा अंजलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिस ग्रह बहुत

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम न जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इं आत्मरा मैलीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रपावो गणत नकाई, हाँ मैं मार करो गुरसेवा, जन नानक।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

एको एक सो अपर परंपर परख खजाना पाएगा। ज्ञान ध्यान सच गैर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीरा जेती है तेती तो जाचै कर्म लै सो पाएगा। कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारा वे प्रवाह खुट भंडार है तू दयाल किरपाल सदा प्रभु आपे मिल मिलाएगा। आपे देख दिखावै आपे आपे थापो थापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता आपे मर जीवाएगा। जेती है तेती तो दे अंदर देखे आप बैस बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाएगा। मारू महला पहला दर्शन पावा जित तुद पावा पाए भगत साचे गुण गावा तुद पाने तू पावे करते आपे रसन रसाएगा। सोहन भगत प्रभु दरबारे मुक्त पए हर दास तुमारे आप गवाए तेरा रंगराते अंदन नाम ते आएगा। ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मन तेरी सेवा जति सती केते बनवासी अंत न कोई पाएगा। विण जान आए कोई न जाने जोगश करे सो अपन भाणे लख चौरासी जियो पाए पाने साल वाएगा। ज्योतिष पावै सो निच होवै मन मुखे आप गणाए रोवै नामो पुला ठवर ना पाए आए जाए दुख पाएगा। निर्मल काया उज्जल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवै बाहुड़ दुख ना पाएगा। बहु साधो दुख प्राप्त होवै पोगो रोग संवंत विगोवै हरखों सोग न मिटई कबहू विण भाणे परमाएगा। ज्ञान में होनी पवै सबाई साचा रवर लिवलाई निरपव शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएगा। अटल अडोल अतोल मुरारे खिर मैं टाहे फेरे उसारे रूप ना रेख्या मितने कीमत शब्द भेद पति आएगा। हम दासन के दास प्यारे साधक साच भले विचारे मन्ने नाओ सोई जन जासी आपे साच दरड़ाएगा। पल्ले साच सच्चे सच्यारा साचे पावे शब्द प्यारा त्रिपवन साच कला तर थापी साचे ही पतियाएगा। वड्डा वड्डा आखे सब कोई गुर बिन सोजी किने ना होई साच मिले सो साचे पाए ना भी छिड़ दुख पाएगा। तुरम विशुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने जिस बक्से तिस दे वड्याई मेल न पछो ताएगा। आपे करता आपे भुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति सर ममता मोह चुकाएगा। दाना कै सिर दान विचारा करण कारण समर्थ्या पारा कर कर वेखै कीता अपना करनी कार कराएगा। से गुण गावै साचे भावै तुझते उपजै तुझ माए समावै नानक साच कहै बेनंती मिल साचे सुख पाएगा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदुकारा तरन गगना हुक्म्या पारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएगा। खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सप्त नहीं सागर नदी ना नीर वहाएगा। ना तद सुरग मच पयाला दोजक पिस्त नहीं खै काला नरक सुरग नहीं जम्मन मरना ना को आए ना जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई अवर न दिसे एको सोई नार पुरख नहीं जात ना जन्मा ना को दुख सुख पाएगा। ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੇਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਏਂਦਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਆਪੋ ਪਾਏ ਵਿਕਸੈ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਗਊ ਗਵਾਲਾ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ ਵਜਾਏਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, ज्योत पावे सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तो ले तो लो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, ज्योत पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का

जो तिल कहानी पीड़ाएं दा पूरे भाग गुरसेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुरसेवा लाए तेरे हथ है सब वड़ियाई जिस देवे सो पाएंदा अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा कर चानन अज्ञान देर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डूमुए अपागे चलदिया घरदार नजर ना आवे जमदर बांधा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई ज्ञानी त्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वड्याई दर सच्चे सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिस्या मिलाए ममता काट सच लिवलाए सदा सच वण जैवा पारी नामो लाहा पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसे मन अंतर नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरलाया पाणा मन्ने सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच समावे

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू समय वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय ईंधन में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथ नंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता

मेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईश तिस्बिन दूजा अवर ना दिस एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवै जन तेरे एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुनी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै एकत्रा करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन पिर तने सिंगार रखे संगान मिल एकत्र वसै दिन राती प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे जो पावे सो आन दिखावे एक वस्त को पहुँच ना साके तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोर प्रे परदेश ना जाहो वसो कर मोर ऐसा बणज करो गृह पीतर जित उतरे भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पही कृपा नानक सतसंगे तो धन पिर आनंद उलासा है। धन अंधी पिर चपरसियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। धन कह तू वस मैं नाले प्रे सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हो कित ही ना लेख वचन देहे छोड़ ना जासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा जिचर रख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊट सिदासा है। जाओ प्रे बचन कह तन साचे तन कछु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर पिर ही संग मांगे ओ बात जाने करहासा है। आई आ गया पिरो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया पूर सिधायो छूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा है। हरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचबुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे मन मुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मन मुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पैराया सदा आनंद करे आनंदी जे सिर पाओ पया गल खासा है। हम बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ना कत ही जासा है। गुण निदान किश कीम ना पाई घट घट पूर रहे सब ठाई नानक शरण दीन दुख भंजन हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूर्ण सिर सिरै नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहेब अवर नाही को दूजा है। हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला रूप करे कर वेखै विकसै आपे ही आप पूजा है। आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा है। साचा तख्त सच्ची पा

जा कौ मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई शेख मसाए कहा जी, सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा, सिबत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया बुझ, नानक बंद खलास तरा। मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब उच बिराजे, आपे था पो था पे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किश भौ ना व्यापै बालका। गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया, अपना सिमरण दे प्रतपालिया, ओह सगल कटा का मालका। चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ है गोचर देवा, जी जंत सब ता की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका। तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गह लीने अंध कूपते, विरले के ही सालका। आदि अंत मध प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका। ऊतम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमल सगले जालका। संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखे नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका। जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका। तत्ती वाव न ता कौ लागै, सिमरत नाम अंदन जागै, अनद बिनोद करे हसिमरन, तिस माया संग ना तालका। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका।

गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साए सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचत स्वामी, दरगह सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर्ण रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै न कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारै कछुए नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंधकूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचर जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

बोलत ही बड़ लाज, राम जे पाया राम ते भवै न बार बार रहाओ, झूठा जग डह कै कना दिन दोए बर्तन की आस, राम उदक जे जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जवा तुम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया ब्रह्म गया समुंदर है पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रया लिख सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक हो रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोका उतार कहां ले जई है, सोदो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवै लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़ तै हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रम नू रसपत इंद्री कया न माना, बाबा अब ना बसो एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहित चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पा गए लै बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपव होए वना हम बै, सहो हदूर देखे ता पव पवै बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपव होए वना हम बै, हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े पाखंड रता सब लोक वना हम बै, त्रिसना पासना छोड़ई बैरागी अड़े ममता जालिया पिंड वना हम बै, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम बै, सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े जे लोचे सब कोए वना हम बै, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े सहजे पावे सोए वना हम बै, कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको पौजल पार उतार वना हम बै, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समानो साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंत बिनोदी जातना काहू की मानी, सलोक कबीर गगन दमामा बाजेओ परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड खेत, कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਤਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਏ ਸਜਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੁਜਗ ਜਾਤ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ ਬਾਜੀ ਗਰਬੇ ਕਾਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉੱਤਰ ਸਪਾਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਥਪਿਆ ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤਹਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਆ ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਖ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਦ ਕਉ ਸਰਦਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਓ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਜੀਆਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਗਾ ਰਹਾਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੇਗਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ। अपना खसम जन आप ते आया, याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंद का माथा यहां हुआ काला। जन नानकी परमेसर सुनी अरदास, मलेश पापी पचिया पया निराश।

नाम बिना सब दुनिया शार। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए। नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण। पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में एक नाम उदार। नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा। सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ। रहाओ साधु संग होवे उदार, शोभा पावे प्रभ कै द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा। नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान। पहरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंद को अगन में पावे। पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही। पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत। निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया। दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई। नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा। चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता। अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे। जो चितविय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़। दासी को सिमरै मनमुख अंध ज्ञाना। हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा। अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तड़ तीर्थ नहीं पाया। मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया। पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण। रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो। जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो। नट नाटक निरताए,

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का इसवार, तिसका रखा एको सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए, पैरो महला पंजवा।

तौ कड़िया जे दूजा करता तौ कड़िया जे अन्याय को मरता तौ कड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किश होए तिंगाण तौ कड़िया जे भूल रजाण गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निवेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गम नहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहां को बगता बिन श्रवना कहां को सुनता बिन नेत्रा कहां को पेखे नाम बिना नर कहीं ना लिखे बिन विद्या कहां कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहां मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पहरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रसियानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत रोग का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कते ना जावे पार ब्रह्म जिसकी नी दया बहां पकड़ रोगों कड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबे न चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोबा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांझ पिता पुत्रल किन्नी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ
पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरव महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दी बाण। सतगुर कहो सत बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरव महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया। नाम लैत पाप तंते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठ सठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरव महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार। एहो मन दीजै ता कौ वार, सिमरन ता कै मिटै संताप। होए आनंद ना व्यापै ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुखर सगल संताप। गुर होए मेरी माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटियां देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम। जा कौ भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आल के आवै। बेसवा भजत किशने शरमावै, सारो दिन समझूरी करे। हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर, माया लग पुलो संसार। वा पुलाया पुलावन हार, राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ।
पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवे, करने हारना जी मैं आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, पैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार लय सागर संसार रहाओ, जिन को लिखिया हर एहो निदान, सहजंतर गै पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, अगै मिले निथावे थाओ, जुगै जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम, सदगुर पूरे कीनो दान, नाम रत्न मेरे भंडार, अगम्या मोला।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन में लय, दीन दयाल सदा कृपाल, बिरस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साह संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ। चरण कमल स्यो लागो हेत, खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत, आठ पहरो हर हर जप जाप, रखनहार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक कौ सदा प्रतपार, पग जना के सास निहार, मानस की कहो केतक बात, जम तेरा खै दे कर हाथ, निर्मल शोभा निर्मल रीत, पार ब्रह्म आया मन चीत, कर कृपा गुरदीनो दान, नानक पाया नाम निदान। भैरव महला पंजवां, करण कारण समर्थ गुर मेरा, जी प्राण सुखदाता नेरा, पै पंजन अबनासी राय, दर्शन देखे सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ। पूर्ण काम मिले गुरदेव, सफल दाता निर्मल सेव, कर गहलीने अपने दास, राम नाम रिद्धियो निवास, सदा आनंद नाही के सोग, दुख दर्द न व्यापै रोग, सब किश तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुर अगम अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी, जल थल महियल रविया सोए, नानक सब किश प्रभ ते होए, पैरव महला पंजवा, मन तन राता राम रंग चरने, सर्ब मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ, सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा, कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जना आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिघ ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे, नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जप तो हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किस चाख ना जो है, हर सिमरत दैत देव ना पुहै, हर सिमरत मोह मान ना बदै, हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला, जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग, नानक कौ प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार, पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे बेद, आपे कटकट जाने भेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ, दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ, आपे वाण तरण त्र पवन सार, जाकै सूत परोया संसार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी, जत कत पेखो तत तत सोए,
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪੁਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਵਿਆਦ, ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ,

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हों ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौ नद मेरा, संपै हेत कला तो तन तेरा। रहाओ आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हाथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत।

कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जो रामै जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुला बाग निवाज, एक मसीह तो दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कहे करे मुला कहे करे सेख। कहे कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप आ पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करै सोई अवसार, फिर पछताव ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन्ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर मेरा कर कर मरै। निज पद

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा ए, कबीर का स्वामी रया सुमाए, महल्ला पंजवा। जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए, ठाकर हमरा सद बोलंता सर्ब जिया को प्रावधान देता रहा, अंतर देव न जान अंध भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कौन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई, कहत कबीर हाँ कहो पुकार समझ देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे दीपक पता।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे हुए नरा। प्रणवत नाम देव ना कह बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदाओ भले निंदाओ भले निंदाओ लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यों राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू भूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत ते

हट वाणी तन माल हट कीत, जुवारी जुए माहे चीत, अमली जीवै अमल खाए, त्यों हर जन जीवै हर ते आए। अपने रंग सब को रचै, जित प्रभ लाया ते तित लगै रहाओ। मेघ समय मोर नृतकार, चंद देख बिकसै कौलार, माता बार को देख आनंद, त्यों हर जन जीवै जप गोबिंद। सिंह रुचै सद भोजन मास, रण देख सूरे चित उलास, किरपन कहो अतन प्यार, हर जन कहो हर हर आधार। सर्व रंग एक रंग माहे, सर्व सुखा सुखार कह नाहे, तिसे प्राप्त हो निदान, नानक गुरजस करे दान। बसंत महला पंजवां, तिस बसंत जिस प्रभ कृपाल, तिस बसंत जिस गुरदयाल, मंगल तिसके जिस एक काम, ते सद बसंत जिस हृदय नाम। गृह ताके बसंत गनी, जा कह कीर्तन हर तुनी रहाओ। प्रीत पार ब्रह्म मोल मना, ज्ञान कमाई है पूजना, सो तपसी जे साध संग, सा ध्यानी जस गुरै रंग। से निरपो जिन पौ पया, सो सुखिया जिस ब्रह्म गया। सो एकांति जिस रदा थाए, सोई निहचल साच ठाए, एका खोजै एक प्रीत, दर्शन परसन हित चीत। हर रंग रंगा सहजमान, नानक दास तिस जन कुरबान। बसंत महला पंजवा, जी प्राण तुम पिंड दीन, मुग्ध सुंदर धार जोत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत निहाल। मेरे प्रीतम कारण करन जोग, हाँ पावा तुम ते सगल थोक रहाओ। नाम जपत होवत उधार, नाम जपत सुख सहज सार, नाम जपत पप सोभा होए, नाम जपत बिघन नाही कोए। जा कारण एह दुर्लभ देहे, सो बोल मेरे प्रभु देहे, साध संगत में ओ विश्राम, सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम। तुझमे दूजा कोए नाहे, सब तेरो खेल तुझमे सुमाहे, ज्यो भावै त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां, प्रभ प्रीतम मेरा संग राए।

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो तहनु रहाओ। जा कौ खोज सुर नर देव मुन जन सेखना लह पेव। जा की गत में तो कही ना जाए घट काटो घट काटो रहा समाए। जाके भगत आनंद में जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां मिल पानी जो हरे बूट सब कही ना जाए घट काटो घट काटो रहा समाए। जाके भगत आनंद में जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां मिल पानी जो हरे बूट साध संगत त्यों मैं छूट। जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण गुरह पीर। तुम दाते प्रभ देन हार निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्राप्त साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद मन या गाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव आद पुरख परंपर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवां तुम बड़दा ते दे रहे जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार तू कर गत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत या वह नाही कशुरीत। मन में राखो वासेक नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम प्रवीन अंत ना पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊच हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेव्या सुखी से संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवां तिस तू सेव जिन तू किया तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो है फिर डान ना लागे। तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग होए जिस प्राणी सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई साधु संगत गुरे बताई। ऊहा जपिए केवल नाम साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना नानक गुरमिल गाए गुना। बसंत महला पंजवां जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे जिसकी सेवा सब किश लह। राम राम बोल राम राम त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश कटकट जिसका है प्रगास। जे सिमरत पतत पुनीत होए अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव संत सवा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान तिसको मिलिया हर निदान। जिसकी गतमित कही ना जाए नानक जन हर हर त्याए।
ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ। ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਬਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾ ਰਹਾਓ, ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਮੋਹਿਆ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸਰਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਧਾਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਿਹ ਨਿਸਤਾਰ, ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਦੇਵ।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपतो कछ नहीं संताप, गोविंद जपतो समट अंधेर, हर सिमरतो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निकट पेख प्रभ करण हार, ईतूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरण नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, साखत फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहित सिद्ध नव निध एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सहित होना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम।
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ, ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ

जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जय अर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सगल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानके बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत गृह क संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कश बिगड़ो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रताओ चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किशकीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साज ना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैन नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, खटखट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उत्तर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांगो, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहा तव जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिगल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हो खेव ना सकाऊ तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हौ तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ धोबी धोवै बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ रम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवै काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदो खूंबराज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढे परदेश आप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुवार पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमकबाल इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के

पीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परै पीठ। कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारै ईट टेम। राग सारंग चौब दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद। अपने ठाकर की हों चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के हम मैं मारन बेरी। रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे। मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझ सो शब्द विचारे। मन मुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। जबकि राम रंगी लहराती, राम जपत मन तीरे। हाँ मैं छोड़ पई बैरागन, तब साची सुरत समानी। अकोल निरंजन स्यो मन मानिया, बिसरी लाज लुकानी। पूर्व वेख नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हर कै नाम रती सुहागन, नानक राम पतारा। सारंग महला पहला, हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै। जेहवा साधना फिकी रस बिन, बिन प्रभ काल संतापै। रहाओ जब लग दर्शना परसै प्रीतम, तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखते ही मन मानिया, जल रस कमल बेगासी। ऊनव कनहर गरजै बरसै, कोकल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग भयंगम, कर पिर तन सोहागै। कुचर करूप कुनार को लखनी, तिरका सहज न जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समानिया। आए न जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सह सुहेली, प्रभ देखत ही मन तीरे। सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण आधारा। रहाओ इन बिद हर मिलिया वर कामन, तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सह साचू का, गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन मान अभमान ना तां कहो, हिंसा लोभ विसारे। सहज रवै वर कामन पिर की, गुरमुख रंग सुवारे। जारो वैसी प्रीत कुटुंब संबंधी, माया मोह पसारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही, दुबदा करम बिकारी। अंतर रतन पदार्थ हित कहो, दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, हर के संत जना की हम तूर। मिल सत संगत परम पद पाया, आत्म राम रया भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिलै शांत पाई है, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई प्रफुलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड़ै भाग सतसंगत पाई, हर हर नाम रहा भरपूर। अठ सठ तीर्थ मज्जन किया, सतसंगत पग नाए तूर। दुरमत बिकार मलीन मत होछी, हिरदा कसुद लागा मोहकूर। बिन करमा क्यों संगत पाई है, हम मैं ब्याप रहा मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सतसंगत पग तूर। नानक संत मिलै हर पाई, जन हर भेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोविंद चरणन कौ बलिहारी। भव जल जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी। रहाओ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत बिचारी। अन दिन राम नाम जप हृदय, सर्व कला गुणकारी। प्रभ अगम गोचर रविया सर्व ठाई, मन तन अलख्या पारी। गुर कृपाल पए तब पाया, हृदय लख लखारी। अंतर हर नाम सर्व धरणी तार, साकत कौ दूर पया हंकारी। तृष्णा जलत न कबहू बूझै, जुवै बाजी हारी। उठत बैठत हर गुण गावै, गुर किंचित कृपा तारी। नानक जिन कौ नदर पई है, तिनकी पै सवारी। सारंग महला चौथा,
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ ਓਏ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚੱਲਾ ਮਤ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਓ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਲਾਗੇ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ, ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ, ਅਣ ਦਿਨੋ ਰਹਿਸ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਪ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਸਾਂਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ

जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवे लिंग चिंग न होवे ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुरसब्दी मिलिया। सतगुर कह पाणे जो चले हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्स में लायान फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारी है नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगी पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भर अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा, सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक, रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर ताज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई, मन का मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का, रहाओ आगे कहो किस तुल्हा बांध हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो, रहाओ तुदनो सेव है, तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से अमृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना, रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुरबचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंत्र प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन भावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया, रहाओ तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिरसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवार नहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथन हारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

एक शब्द लिवलाई नाम पदार्थ सहजे पाया ए सतगुर की वड्याई। सतगुर ते हर हर मन वसिया सतगुर कहो सदबल जाई। मन तन अर्प रखो सब आगै गुरचरणी चित लाई। अपनी कृपा करो गुर पूरे आपे लहो मिलाई। हम लोहो गुर नाम बोहे था नानक पार लंघाई। मलार महला चौथा पड़ताल करती जाए को अंकार सतगुर प्रसाद। हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बन जाओ हर तन संचो जिस लागत है नहीं चोर। चात्रक मोर बोलत दिन राती सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीर्त गाई छूट गयो जमका सब सोर। मलार महला चौथा राम राम बोल बोल खोज देवड़ भागी। हर का पंथ को बतावे हों ता कह पाए लागी रहाओ। हर हमारो मीत सिखाई हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले और द्वितीया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक एक निमुख पलो मुख लागी। राग मलार महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नमनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी हो आया तो मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत सजन मेरे पए सुहेले, प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट, कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते। कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते। नानक सरन चर

तन सुख वसै आए रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईस महेसर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदै लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरों फुरमाया। श्लोक महला दूजा। सामने आया हे सखी कंत चित करे हो नानक चूर मरे दोहागणी जिन्हें वरी लागा ने हो। महला दूजा। सामने आया हे सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सवन सोहागणी जिन सह नाल प्यार। पौड़ी आपे शिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप पिड़ै मारे आप कार्ज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिरलेख। विण कलम मसवाणी है सतसंगत में लाप जिथे हर गुण सदा वखाणी है। नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है श्लोक।

अमृत पी जाई, हर भगती असनेह गुरमुख की जाई। सलोक महला तीजा, गुरमुख मलार राग जो करै, तिन मंतन शीतल होए, गुरसबदी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मन तन सच्चा सच मानो, सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कल युग में कोर अंधार है, मन मुख राहो ना कोए, सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा, इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ, जिसकै हुक्म इंद वरसदा, तिसकै सद बलिहार है जाओ। गुरमुख शब्द संभाली है, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते से जन निर्मले, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सदगुर से पूरा पाया, पूरा कर्म ते आए, पूरा शब्द मन वसाया, पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मरे मन मार, तन जने दी माया, दर सच्चे सच्यार सच्चा आया, पुछ न सके कोए जा खसमै पाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। सलोक महला पहला, कुलहा देन दे बावले, लेंदे वड्डे निलज, चूहा खड न मावई तिकल बन्ने शज। देन दुआई से मरै जिनको देन से।

खसम मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगण गहन चढ़ी बिल्लाए, खसम भावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए, सकता सी हो मारे सह मेरे सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरै ना मावे सहे गया पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल ना पावे, अग स्यो प्रीत करे अक तिड्डा अग डाली बै खाए, खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए, नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैन करेरे छड़ ना सके कोई, मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे, तिन पौ सागर तरना, पौड़ी अगमा गोचर तू धनी सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवनहार, जिनी सेव्या तिनी सुख पाया गुरमति विचार, इकना नो तुद एवे भावदा माया नाल प्यार, गुर कै शब्द पसला ही है अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत ना हो वही विण सतगुर ना लगे प्यार, तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार, सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल, छिजै काया होए पराल, वर्तन वर्तिया सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तबताल, अंधा चख चख पया चेर पिछे रोवे लियावे फेर, बिन बूझे के सूझे नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही, नानक खसमे वै भावे सही मुए जिन चित ना आवे, महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी, वन गया रूप विनसिया दुखी देह रली, कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्ला गोईया कीता चौरली, नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी, अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई, बाज गुरु जगत बौराना नावे सार ना पाई, सतगुर सेवै से प्रवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहेब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई, आपणे भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई, बिखिया कदे ही रजै नाही मूर्ख भुख न जाई, दूजै सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई, सलोक महला पहला सर्म धर्म दोए नानका, जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र ना कांडिया, जित सिर चोटां खाए जिनकै पल्ले धन वसै तिनका नौ फकीर, जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर, महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख, रूपी भुख ना उतरै जा देखा ता भुख, जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख, महला पहला अंधी कमी अंध मन मन अंधे तन अंध, चिकड़ लाया क्या थी है जा टुटे पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नामिण केते डुबे साथ, महला पहला लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिर शाहो लख लश्कर लख वाजे ने जे लखी कोड़ी पातशाहो, जिथे सायर लंघना अगन पानी असगाहो, कंधी दिस न आवई ताही पवे कहा, नानक उथे जानिए साहा के पातशाह, पौड़ी एक ना गली जंजीर बंदर बाणी है, बदे छुट्टे सच सच पछाणी है, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी होए नबेड़ गया जानिए, पहो जल तार नहार शब्द पछाणी है, चोर जार चुवार पीड़े कहानी है, निंद कलाए तबार मिले हड़वाणी है, गुरमुख सच समाए सो दरगह जानी है, श्लोक महला दूजा।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावै गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पई, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जापो जगदीश, तुमरे जन राम जप है ते उत्तम, तिन कहो हौ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यों शोहे पारस मनूर पहे कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यों काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार बर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवनहार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दल संतन तुमरे गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो सरन तुम्हारी आहयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीर बिनसै मोह परम दुख पीर रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मन सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रवर दै बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अविनाशी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गर्जत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहु मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम ला गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संग मलाभ पायो नानक फिर नाम रंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट मैं कोई न सूजे एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दरसे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोर
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान एक।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ो तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा, दर्शन पेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हो कैसे कराओ, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए, त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो, जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाक रहो समाए, एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल, हां हां मन चरण रेन रहाओ, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए, चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना, कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान, तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां, प्रभ कहन मलन दहन लहन, गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ, तटन खटन जटन होमन, नाही दंड धार सुवाओ, जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहा पाई ठाओ, सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ, नैन तिपते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन, आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवां, चरण सरण दयाल ठाकर, आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ, संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध, बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो, राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन, कोट पाप विनाश, मन दर्शन की प्यास, प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक, हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां, वार वारो अनक डारो, सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ, कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इनस्यों तात, मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवां, अहं तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ,
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।

कृपा कृपा कृपा कर हर जियो, कर कृपा नाम लगावै गो, कर कृपा सतगुरु मिलावो, मिल सतगुर नाम ते आवै गो, जन्म जन्म की हम मैं मल लागी, मिल संगत मल लै जावै गो, ज्यो लोहा तरयो संग काष्ट, लग शब्द गुरु हर पावै गो, संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गो, बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड़ पानी चीकड़ पावै गो, भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो, खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुर उपदेश समावै गो, भगत जना को सदा निव रही है, जन निवह ता फल गुण पावै गो, जो निंदा दुष्ट करे भगता की, हर नाक्स ज्यों पच जावै गो, ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तपन पूज करावै गो, जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावै गो, जात न जात देख मत परम, सुख जनक पगी लगते आवै गो, जूठन जूठ पई सरी उपर, खिन मनुआ तिल ना डुलावै गो, जनक जनक बैठे सिंघासन, नौ मुनि धूर लै लावै गो, नानक कृपा कृपा कर ठाकर, मैं दासन दास करावै गो, कनड़ा महला चौथा, मन गुरमत रस गुण गावै गो, जिहवा एक होए लख कोटि, लख कोटि कोटते आवै गो रहाओ, सहस फनी जप्यो सेख नाव गै, हर जपते अंत ना पावै गो, तू अथाहो अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावै गो, जिन तू जप्यो ते जानी के, हर जपत्यो कौ सुख पावै गो, बिदर दासी सुत शोक शोहरा, कृष्ण अंग गल लावै गो, जलते उपत भई है काष्ट, काष्ट अंग तरावै गो, राम जना हर आप सवारे, अपना बिरद रखावै गो, हम पाथर लोह लोह बड़ पाथर, गुरसंगत नाम तरावै गो, ज्यो सत संगत तरयो जलाहो, संत जनामन पावै गो, खरे खरोए बैठत उठत, मार्ग पंथ ते आवै गो, सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावै गो, सासन सास सास बल पाई है, निशासन नाम ते आवै गो, गुर प्रसादी हम मैं बूजै, तौ गुरमत नाम समावै गो, सतगुर दाता जी जियन को, भाग ही नहीं पावै गो, फिर एह वेला हाथ ना आवै, परतापै पछतावै गो, जे को भला लोड़ै पल अपना, गुरिया गै टह टह पावै गो, नानक दया दया कर ठाकर, मैं सतगुर पसम लगावै गो, कानड़ा महला चौथा, मन हर रंग राता गावै गो, पै पै त्रास पए है निर्मल, गुरमत लाग लगावै गो रहाओ, हर रंग सराता सतबैरागी, हर निकट तिन्ना करे आवै गो, तिनकी पंक मिलै ता जीवा, कर कृपा आप दिवावै गो, दुबदा लोभ लगे है प्राणी, मन कोरे रंग न आवै गो, फिर उल्ट्यो जन्म होवै गुरबचनी, गुरपुरख मिलै रंग लावै गो, इंद्री दसे दसे फुंतावत, त्रै गुणिया खिन्ना टुकावै गो, सतगुर परचै वसगत आवै, मोख मुक्त सो पावै गो, ओ अंकार एको रव रहया, सब एक समय समावै गो, एको रूप एको बहुरंगी, सब एक वचन चलावै गो, गुरमुख एको एक पछाता, गुरमुख होए लखावै गो, गुरमुख जाय मिलै निज महली, अनहद शब्द बजावै गो, जी जंत सब सिष्ट्यो पाई, गुरमुख शोभा पावै गो, बिन गुर भेटे को महल ना पावै, आए जाए दुख पावै गो, अनेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलावै गो, सतगुर मिलत महा सुख पाया, मत मलीन बिकसावै गो, हर हर कृपा करो जग जीवन, मैं सरदा नाम लगावै गो, नानक गुरु गुरु है सतगुर, मैं सतगुर शरण मिलावै गो, कानड़ा महला चौथा, मन गुरमत चाल चलावै गो, ज्यो मैंगल मस्त दीजै तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावै गो रहाओ, चल तो चलै चलै दै दै दिस, गुर राखै हर लिव लावै गो, सतगुर शब्द देर दे अंतर, मुख अमृत नाम चुआ।

आवै गो। बिसियर बिसु परे है पूर्ण गुरगरड़ शब्द मुख पावै गो। माया पयंग तिसने न आवै बिख चार चार लिवलावै गो। स्वान लोभ नगर मैं सबला गुरखिन मैं मार कढ़ावै गो। सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावै गो। पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काट कढ़ावै गो। त्राहे त्राहे सरन जन आए गुर आथी देख नगलावै गो। सुपनंतर संसार

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहे एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जान। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायणे, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतरजामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यों, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यों काज ना कछुए, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगै, पावनिया सो पाइयै, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइयै, नानक तत तत स्यो मिलियै, हीरे हीर बिधाइयै। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, योग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहारै, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरा मान हर हर मान, नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान, जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग प्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। योग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली।
कल्याण महला पंजवा कौन बेता की कहां करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण कहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व युग मैं तुम पछानू हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मेर साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निहचल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान सर्व कटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान सुरत मत चतराई सोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सवाई तत गुरमत काढ़ लई जै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जै सतगुर आगम अगम है ठाकर पार सागर भगत करी जै कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम राम राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम हो वो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागनहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

तेरी वडियाई, रहाओ जो तेरी शरणाई हर जियो, तिनकी करें प्रतपाल, आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे न सके जमकाल, तेरी शरणाई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जम्मे तै मर जाए, जो तेरी शरणाई हर जियो, तिन्ना दुख पू किश नाहे, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाहे, प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो, जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होवा, चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय, हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हरस की जय, रहाओ मूल पछाण तिन निज कर वासा, सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल पर गासिया, हों मैं दुर्मत खोई, सब ना मैं एको सच वरतै, विरला बुझै कोई, गुरमति मन निर्मल होवा, अमृत तत्व खानै, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै, सद बलिहारी गुर अपने विटों, जित आत्मराम पछानै, मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गवाया, नजर करे ता सतगुर मेले, सहजे सही समाया, नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे भगत आया, प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया, कर कर वेखै करे कराए, सर्ब जियां नो रिजक दिया, कली काल मैं रवे आराम, कड़ कड़ पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम, रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग, घट घट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया, जो गुर सरनाई पज पया, इंद्री पंच पंचे वसे आणै, खिमा संतोख गुरमत पावै, सो तन तन हर जन वड पूरा, जो पै बै राग हर गुण गावै, गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित तरै, कार्याचार बहु संपो संचय, जो किश करै सो नरक परै, एको शब्द एको प्रवर्तै, सब एक स्ते उत्पत चलै, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रलै, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सा लाहे, पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे, रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले, जिसनों अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए, दुख नेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सुन लाए प्यार, व्यथे उथे हो आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा, सोई भगत सुगड सुजाणा, नानक तिसकै सतकुरबाणा, प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रसक रसक गुण गावै गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुरबान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हरि उतमरे दे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान, रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम वखान, कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलै, सब रहन संभालै हर गाल, हमरै प्रभ हम लोच लगाई,
हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तुर रवाल। हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल रहाओ। साकत कहो दिन रहने अंधारी, मोहे फाथे माया जाल। खिन पल हर प्रभु हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक। गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी। तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर। ज्यो विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वसियो। तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करे देह मानुख। नाम बिना निकटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय। सब वरतै समय ईक, जन नानक कव हर कृपा तारी। गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किलविख पाप लहे। जप मनो राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो। कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने। ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना। परम प्रमयो चार गहे, तो वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभु वडफा। सतगुर बचन सुखाने ही अरे, हर तारी हर प्रभु कृपफा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरे। हर नामा मन तन बसफा रहाओ, काया नगर वसियो कर मंदर। जप सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पहे सुहेले। मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी। हर उर तारे गुरनिमुखफा, कोट कोट के

हर हर आप धरियो हर जन में जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मन राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए ना पाइए कतहू। गुरपुर हर प्रभ लभ रहाओ राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा लोह मनूर कंचन मिर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शकायक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान। जप मन परमेश्वर प्रदान खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत् रजोत निवाजिया सहजा तरत बर्तन कौ पानी। निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोय ना होवै कोट अपराध एक खिन में तो होवै। दात करे नहीं पछोतावै एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा। प्रभ की सेवा जन की सोबा काम क्रोध मिटे तसलोबा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावै प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ताँ को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मुहै नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसेखिन पीतर पै कृपाल गुसाई सास पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाई है लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सो बावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम से लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बन जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई एवड भागी जिस मिल ते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटाके अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवां कर कृपा अपने प्रभ कीए हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरणी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उत्तरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यों लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यों मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाई है कहो नानक वड भागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाई अवड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवां गुरपुरा पूरी तां की कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब तां का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुरप्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपुरे अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपुरे प्रभ सिउ लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सूढ़ सुजान गुरपुरा पाई है वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰ

इहां उहां चरण पुजारे मुख उजर साचै दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जलथल महियल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुर्बान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाओ अमृत बाणी सुनत निहाल बिरस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पै निहाल प्रभाती महला पंजवा गुर गुर करत सदा सुख पाया दीन दयाल पै कृपाला अपना नाम आप जपाया रहाओ संत संगत मिल भया प्रगास हर हर जपत पूर्ण पई आस सर्व कल्याण सुख मन बूठे हर गुण गाए गुरु नानक तूठे

अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक सहस्कृति महला पहला पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चय करमं कौ नानक नेचौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै नेफलं तस जनमस जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कौ नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपेयो नानक ता को दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्णं ता सर्व देवा देव देवा ता आत्मै आत्मं श्री वास देवस जे कोई जान सपेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव श्लोक सहस्कृति महला पंजवा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बिनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्ध्यं अचत तनै त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानकै मिथ्यंत देहं खीणंत बलं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आथित भवनं गनंत स्वासा भयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत दोयं लेपनं रक्त चरमण है नवंत द्वारं पीत रहतं बाय रूपं अस्तंभन है गोविंद नामं न सुमरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुण अज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला गंभीरं ऊचै सर्वज्ञ अपारा प्रत्यापरं विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावदै अहो जासर खेण गोपालै नानक रोमना छेदयते बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिशै बिखम थान बसंत ऊचै न समरंत मरण कदांच होवंत आग्या भगवान पुरख नानक कीटी सास्या करखते शब्दंग रतंग हितंग मया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्रंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं।

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चित्व मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ

कबीर बैसनो की कूकर भली सागत की बुरी माए ओह नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हर है चून चहन ना रहाए बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त दुआ

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौ बेद मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राखै नार, गधी होए कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामो कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सह नाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे कौ शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कहे कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बर्ख भरे सरताल, चात्रक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या कर है बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़ी है मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो की नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार।

आठ कबीर काल करंता अब है कारो अब करता सोए ताल पाछे कछु ना होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतिक देखिया जैसी तोई लाख दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जमना करे तिस्कार जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परे कुटुंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बिचे तू माताम। कबीर सागते सूकर पला रखे अच्छा गाओ ओ सागत बपरा मर गया कोई न लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसरों हुआ ता क्या पया माला मेली चार बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोना होए रहो बाट का तजमन का अपमान ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊज पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओढ़ हीरा किसका बापरा पुजन रतन करोड़। कबीरा

सोई राम सब कह है सोई कौत कहार, कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे भूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृत जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ से लर परया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब कार्ड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चढ़िया टागिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पही ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबैर सतल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तो है साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पही ना तेल। टूंडत डोले अंधगत, अरचिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कित काम मिसल फकीर गाखड़ी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अबगत।

बरस एक हो फिर किने नो पर चौलायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुणाओ क्या कहो, गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो। पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ, धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ। पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ, काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बर, गुर अमरदास सल पण तैं दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै, रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै, पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवै। सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा, सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दरिदर ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमे नाम जा को फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और तरिया, हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया, तिन पहु निवार अनपै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अन पौ उन्मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे, मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे, अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारेओ। दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारेओ, सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने, नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो, संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै, सुख सागर पायो दिनत हर मग ना हुटै। संजम सत संतोख सीर सनहो फुटै, सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो, नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी। सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी, आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो, प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै, मत माता संतोख पिता सरसै समायो। आजोनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो, आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो,
जगत उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईए तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचरै तै शब्द निशान मजायो से सदा सह शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचरै तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवासै जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नासै गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवारै जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहन इस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास अरड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीट हंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहो मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई।

है करकै होए करे न गल्ला पिटन सिर खोहे न नाव लैन यार करन समाए नानक तन बल हारै जाए रे मंडी गना डोली ऐ सीधे मार्ग ताओ पाछे बग डरावनो आगे अगंत लाओ सह सह जियरा पर रहो मां कहो अवर ना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यो संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिले बहु नंबर ना होए कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरे जल लोड़ लहो विण गुर ने जल नाहे जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साग स्यो ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा मैं आवो जाओ ऐन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मर है जीवन नाही तान छोटा सेती जो मर है लगी सा प्रवान जिसन लाए तिस लगे लगी ता प्रवान फिर पै कामना निकल है लाया तिन सुजान भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया तातू पंजर लाए कूड़ा पाजिया भांडा आन ग्रास जात पावसी परम ज्योत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कहया बिरदरा जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे करूप एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकर सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोष का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान सो खत्री दरगै प्रवान लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै तन नाथ पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री सवाल सबनी कटी सौ वस है सहबन कट ना कोए नानक ते सुहागनी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापे मूल्य आया वै कित थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवर्तावा पाओ दूजा गुरबिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्लै उठी चलै साध नाही अवे ही गल्लै राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मंत्र जो ज्या पार सीता लै गया दहसरो लक्ष्मण मुओ सराप नानक करता करन हार कर वेखै थापो थाप मन मैं चूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर यारा दया आया कर संजोग भूला दैत ना समझई तिन प्रभ किए काम नानक वे प्रवाह सो कीर्तना मिटई राम लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर सहर अमृतसर सिफती दा कार महला पहला
ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਟਣਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਤੰਮੀ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਕਰੇ ਸਿਆਪਾ ਰੋਵਨ ਕੁੜੀ ਕੰਮੀ ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹੰਮੀ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੈ ਸੜਿਓ ਹੇ ਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿਤ ਡਿੱਠੈ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਚੜੈ ਚ ਵਗਣ ਮੰਨ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇ ਔਰ ਆਏ ਨੋ ਮਤ ਚੱਲੈ ਜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਮਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਹਿ ਸਮਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭਿਆਗਤ ਹੈਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ ਤਿਨਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਕਾ ਭਿਖਕ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਪੂਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ ਹੋਵਾਂ ਪੰਡ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਕਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਤਾਨ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪਾਹੇ ਅਤੇ ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀ ਐ ਇੱਕ ਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਾਥੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ

चाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीना कहो नानक हर भज मना जे बिद जल कौ मीना बिख्यान स्यों का हे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परे न जम की फास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औध जात है बीत बिरध पयो सूजै नहीं काल पहुंचो आन कहो नानक नर बावरे क्यों ना पजै भगवान तन धारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पतते उधार।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जाना।

काट काट में हर जू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने देवतर है पार। सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेह बा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी

और न लेत उधार। जो सुपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले है, कहो नानक सुन।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख

जगत पे खारी फिर तो है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण हो वै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नमा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरे है कर रावण दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदयां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहे

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सो

0: चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल।

तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर ना कोई, तू जोग जोग

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन

से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तितकट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। धुरमस्त

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

आऊं। गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर चलिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह,

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बिखसिंद। श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया बिछड़े सब।

अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देखै सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

आप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाख

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए, गुर दाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए, कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ, गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लग गई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड, श्री राग महला पंजवां।

सेवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पां साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे साध

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां।

पद पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सब है ते बाहर बेमोहताज बापा पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन।

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

जाए नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी मन धन मांडी है साच धड़ी धन मांडी है कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे

का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार, शब्द ही ते पाई है हर नाम में लगे प्यार, बिन शब्द

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच मिलहो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच बिगस्या कीमत कहन ना जाए हर बार

आहार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण।

लिखाए, कार कमाल है सच की, लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस्तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल, आप तुलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथने कहन ना छुट्टिए, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाइए, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाइए रतन विचार, मन बीजे गुर अपने, पाइए सर्व प्यार,

मन मुख पत गवाई। बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई। हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। आन दिन भगत करह

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मन मुख शब्द न पावै बंधन बंध पवाया लख चौरासी फिर फिर आवै बिरथा जन्म गवाया।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लै समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन

परम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै वणजारिया मित्रा, आम घटै दिन जाए। अंतकाल पछता।

मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया। मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया। कर्म

पाखड़ चलाया मन मुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिख हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ कम सिख सौहरड़ कम सिख गुरमुख हर हर सदा त्याय सहियां विच फिरे सुहेली हर दरगाह बां लुडाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखे मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा

सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खांडवर भांड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग जुग है जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चल सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया।

गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए मन चिंदे से ही फल पावह चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी कट कट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख हैगामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी बिछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो।

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सर्ब सठापुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शन।

अधर गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसै डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते शांत।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बनजारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वन जवा